अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

0: Mehfil-e Qawwali. Radio 786 100.4 FM Stereo.
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं महफिल कवाली सुफिया तलवी के साथ, आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो 786, आपकी पसंदीदा फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉइस 100.4 एफएम पर. ये प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है तो हम लाइव मैसेजेस नहीं ले पाएंगे. चलिए सुनते हैं अगला कलाम चांद अफजल साहब की आवाज में, नबी की ऊंची शान.

प्रोग्राम की समाप्ति का वक्त हो चुका है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे टेक्नीशियन इब्राहिम इब्रिंस का, जिन्होंने मेरी मदद की प्रोग्राम रिकॉर्ड करने में, और आपका, आप सुनने वालों का, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो अगले हफ्ते मैं लाइव प्रोग्राम करूंगी। तब तक के लिए मिलेंगे इंशाल्लाह। फी अमानल्लाह, शब्बा खैर, जजाकल्ला खैर। अब होगी सलामी छोटे मजीद शोले की आवाज़ में।